श्रोतेओ नमस्कार। हरिभक्ति पारायण श्री गुरु धुंडा महाराज देगलूरकर विरचित नारद भक्ति सूत्र विवरण या ग्रंथाचं क्रमशः वाचन। प्रकाशक हरिभक्ति पारायण भानुदास महाराज देगलूरकर, धुंडा महाराज मठ, उत्पात गल्ली, पंढरपूर। वाचक ऋषिकेश अयाचित। ही वाचन सेवा हरिभक्ति पारायण श्री गुरु चैतन्य महाराज देगलूरकर यांच्या अनुमतीनं आणि कृपाशीर्वादानं सालंकृत।

राजा जानी का फूल वसाल जवानी दीवानी का। ए चल बेटा चल बेटा, बम बम बम बम, चीक चिक चाम चीक चिक बम, चीक चिक चाम चीक चिक बम, चिक बुब चिक बम, चिक बुब चिक बम, चिक बुब चिक बम, चिक बुब चिक, पढ़ के बोल बेटा बम बम बम बम, पढ़ के बोल बेटा बम बम बम बम, पढ़ के बोल बेटा खिड़की खोल बेटा बम बम चिक बम बम चिक बम बम। एक भाई शंभू संगा तंबू, एक भाई शंभू संगा तंबू, तंबू में झम झम ढोल बजे ढम ढम, तंबू में झम झम ढोल बजे ढम ढम, छोटी सी कबूतरी नाच रही चम चम चम चम चम चम चम चम चम चम चम, घुंघरू पायल बांधे घूमटा उतार चले, मुगले आजम के आगे खड़ी है अनारकली। ए चल बेटा चल बेटा, बम बम बम बम, चीक चिक चाम चीक चिक बम, चीक चिक चाम चीक चिक बम, चिक बुब चिक बम, चिक बुब चिक बम, चिक बुब चिक बम, चिक बुब चिक, पढ़ के बोल बेटा बम बम, पढ़ के बोल बेटा बम बम, पढ़ के बोल बेटा खिड़की खोल बेटा बम बम, चिक बम बम, चिक बम बम। ठप ठप ले ले बुचट का, ठप ठप ले ले बुचट का, फट फट

0: जल में दिखा दे प्यारे मटके, यही से दिखेगा अलमत्ता, दिल्ली बंबई कलकत्ता, हरे रामा कृष्णा प्यार की कहानी, चाहे देखो तो चोर चाहे काला पानी, कल्ला जोर कल 20 साल पहले, एक से एक नहले पे दहले, एक से एक नहले पे दहले,
1: आई कुम्बा कुम्बा तुड़ी जोधुमा का छोटू बड़ी रेल कॉम जोमा जोम पाप इसे आलू दम

0: मैना कबूतर
1: नहीं रे बाला नो छोकरा तुम जानता है बोलो कुमड़ी का पिल्लू।

पटु निभवति रचित शीत सुप्रभावनी आण तुझा तोफान क्रूर सैन्यते यंत्र तंत्र शस्त्र अस्त्र आ

किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत पे छा रही है क्यों रात

फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा। आज फिर सीने में उलझी हुई वजनी सांसें फट के बस टूट ही जाएंगी, बिखर जाएंगी। आज फिर जागते गुजरेगी तेरे ख्वाब में रात, आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा।

0: थई थई थई थई झाक दिनक दिन ताक दिनक दिन ठाक दिनक दिन ताक दिनक दिन ठा
1: आंख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है।